शहर दी आवाज, दिला दी पुकार, योर सिटी योर वॉइस योर रेडियो स्टार आ गया फिर तो एक बार तुहाड़ा अपना CJMR 1320 CJMR 1320।

शहर दी आवाज दिला दी पुकार योर सिटी योर वॉइस योर रेडियो स्टार आ गया फेर तो एक बार तुहाड़ा अपना CJMR 1320 CJMR 1320

कुछ तस्वीरें ही आप लोगों को दिखाते हैं। ये आज दोपहर तकरीबन 2 बजे की तस्वीरें हैं। इस गाड़ी में 2 युवक सवार थे। गाड़ी के शीशे चारों तरफ से काले थे।

तारीफ जो हम कर रहे हैं, बस ये कहेंगे कि दुनिया को जीना सिखाने वाले तुम पे मर रहे हैं।

0: Real news, real impact, showing you real world. CJMR 1320. CJMR 1320. The voice of the city.
1: गलत जगह दिल लगा बैठे, चांद को चाह बैठे, कौन होगा हम सब पागल, जमाने में दिया जलाने लगे थे, घर जला बैठे।

शहर दी आवाज दिला दी पुकार योर सिटी योर वॉइस योर रेडियो स्टार आ गया फेर तो एक बार तुहाडा अपना CJMR 1320 CJMR 1320

शहर दी आवाज दिला दी पुकार योर सिटी योर वॉइस योर रेडियो स्टार आ गया फेर तो एक बार तुहाडा अपना CJMR 1320 CJMR 1320

मेरे वालों तुहानू सारयां नू प्यार भरी सत श्री अकाल। हुण मैं जिहड़ा गीत पेश करन जा रही हाँ यह मेरे दिल दे बहुत करीब है। गीत दा नाम है पंजाबी मुटियारा ते उम्मीद करदी हाँ तुहानू पसंद आवेगा।

शहर दी आवाज दिला दी पुकार योर सिटी योर वॉइस योर रेडियो स्टार आ गया फेर तो एक बार तुहाड़ा अपना CJMR 1320 CJMR 1320

0: हाय कीर।
1: हाँ जी, सत श्री अकाल जी।
0: मुझे कुछ कहना है।
1: बोल लो जी।
0: बहुत दिनों से सोच रही हूँ पर फाइनली आ गया। तुम्हें तो पता है कॉलेज में मुझे कितने सारे लड़के प्रपोज करते हैं।
1: अच्छा।
0: कुछ तो एक्सपेंसिव गिफ्ट भी लाते हैं पर मुझे लगता है कि मेरी जोड़ी तुम्हारे साथ ज्यादा सूट करती है। आई मीन रितिका की जोड़ी कीर के साथ।
1: ओ कर जो मैडम जी, तुसी तो अग्गी वधी जाने हो। मन्निया के अपने आप ते मान तो चलो सारे नु बहुत हुंदा पर एडी भी कोई गल नहीं मैडम जी। ओ चाहे तुसी मलमल दा कपड़ा ही हो, ओ जट नु तां खद्दर ही पसंद आ। पर एक गल होर है, जे सरदार नु पाउणा है पहला अपनी बोली ते अपना बाणा इनू चेंज करके आओ, फिर गल बन सकती आ। पर हुण औखा मैडम जी, बहुत औखा।

0: शहर दी आवाज, दिला दी पुकार, योर सिटी योर वॉइस योर रेडियो स्टार आ गया फेर तो एक बार तुहाडा अपना CJMR 1320 CJMR 1320।
1: जे ना हुंदी संताली विच लीक मंजूर नू बेबे दी ले आउणी सी लाहौर तो जरूर अजड़ी जीन शीन पाके टौर मार दी कानूए दे।

शहर दी आवाज, दिला दी पुकार, योर सिटी योर वॉइस योर रेडियो स्टार आ गया फिर तो एक बार तुहाड़ा अपना CJMR 1320 CJMR 1320।

शहर दी आवाज, दिला दी पुकार, योर सिटी योर वॉइस योर रेडियो स्टार आ गया फेर तो एक बार तुहाड़ा अपना CJMR 1320 CJMR 1320।

0: शहर ते तेरी जिंदगी दे विच दिन आखरी है मेरा। अज तो बाद तेनू कदे चेहरा देखना नहीं मेरा। मैं इश्क ते तू व्यापार कीता सी, गलती तेरी नहीं गलती ता मेरी सी, क्योंकि तू नहीं मैं तेनू प्यार कीता सी।
1: Your voice, your community, your culture. This is CJMR 1320, the voice of the city.

अपनी पुकार, योर सिटी योर वॉइस योर रेडियो स्टार। आ गया फेर तो एक बार तुहाडा अपना CJMR 1320।

शहर दी आवाज दिला दी पुकार योर सिटी योर वॉइस योर रेडियो स्टार आ गया फेर तो एक बार तुहाडा अपना CJMR 1320 CJMR 1320

चावला एंटरटेनमेंट बड़े मान नाल पेश कर देने तो हाड़ा अपना रेडियो शो एशियन विजन। दिलानु रखो तुसी संभाल के आ गया जे हरमन प्यारा आरजे अर्श चावला।

0: शहर दी आवाज दिला दी पुकार योर सिटी योर वॉइस योर रेडियो स्टार आ गया फिर तो एक बार तुहाडा अपना CJMR 1320 CJMR 1320
1: पंजाबी आ गया
2: तुसी सुन रहे हो एशियन विजन अर्श चावला दे नाल
3: ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਚਾਵਲਾ ਨਿਊਜ਼ ਨੈਟਵਰਕ ਟੋਰਾਂਟੋ CNN ਟੋਰਾਂਟੋ

0: समोसा एंड स्वीट फैक्ट्री जिथे पाजी दिया सारिया आइटमा $4.75 पर पाउंड तो शुरू ने बेसन पिस्ता रसगुल्ले और जस्ट $5 पर पाउंड तुहाडे इन्ने सालां दे भरोसे अते विश्वास कारण असी लेके आए हैं कस्टमर्स एप्रिसिएशन सेल 2026 100% कैनेडियन मेड टॉप क्वालिटी स्वीट्स हुन 3 लोकेशंस तो सर्व करदे ने 2 इन ब्रैम्पटन 1850 एल्बम रोड इटोबीको वधेरे जानकारी ले कॉल करो 416-213-1165 416-213-1165
1: ओ हेलो यार मेरा भी लोड ले जी ट्रक फेर खड़ गया यार
2: ओ प्रावा हैप्पी बडियाल ते सुखा टीसी कोल जा ते ट्रक दी एक नंबर रिपेयर करा
1: सच्ची
2: ओ मुच्ची
1: फेर प्राइस ट्रक रिपेयर सेंटर दे हैप्पी बडियाल ते सुखा टीसी जो के इंजन रीबिल्ड ट्रांसमिशन रीबिल्ड रिपेयर डीपीएफ क्लीनिंग एंड रिपेयर इलेक्ट्रिकल रिपेयर सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस ए टू जेड सर्विस करके देंगे
2: इना कोला सालना दा तजुर्बा
1: हुन एड्रेस भी लिखा
2: ले लिख ला 1 गुड मार्क प्लेस इटोबीकोक यूनिट 5
1: कॉल 647-706-9257
3: नवरात्रि स्पेशल अनोखा अंदाज दी स्पेशल सेल लगन जा रही है लेडीज मेंस पार्टी वेयर ब्राइडल लहंगास सूट्स साड़ीज कुर्तीज अनस्टिच्ड सूट मटेरियल लेना होवे ते आज ही आओ सूट्स ते ड्रेसेस कस्टमाइज भी करवा सकदे हो नवरात्रि स्पेशल कागरा चोली जस्ट $50 मोर देन 20 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस मेंशन CJMR एंड गेट 20% ऑफ ऑन एवरी ड्रेस अनोखा अंदाज 6101 मेफील्ड रोड यूनिट 3 ब्राम Call 905-794-4005.

0: स्वीट महल वालों का ब्रांड न्यू प्रेसिडेंट कन्वेंशन सेंटर 100 तो लेके 700 की कैपेसिटी डिलीशियस फूड खुली डुली पार्किंग ब्यूटीफुल एम्बियंस मीटिंग ब्याह बर्थडे पार्टी एनिवर्सरी होवे या कोई भी फंक्शन भुल्यो ना स्वीट महल वालों का प्रेसिडेंट कन्वेंशन सेंटर 1133 क्रेडिट स्टोन रोड वॉन फॉर बुकिंग कॉल 416-433-9191
1: प्रेसिडेंट कन्वेंशन सेंटर
2: पील रीजनल कौंसिल दी 26 अक्टूबर नू हो रही इलेक्शन मौके ब्रैम्पटन दे वार्ड 9 अते 10 तो उम्मीदवार सतपाल सिंह जौल दा नाम याद रखना जरूरी है स्कूल बोर्ड दे ट्रस्टी वजों सतपाल सिंह जौल दियां मिसाली सेवावां तो लोकां दे मना विच तसल्ली दी लहर है जिस करके वार्ड 9 ते 10 दे वसनीक रीजनल कौंसलर वजों सतपाल सिंह जौल दी जित यकीनी बना रहे हन लोकां दियां समस्यावां हल करन लई सतपाल सिंह जौल वालों लगातार तत्परता नाल काम किया जाता है उना दी कैंपेन नाल संपर्क करन लई कॉल करो 416-895-3784 ते 416-895-3784
3: ओ हेलो यार मेरा भी लोड ले जी ट्रक फेर खड़ गया यार
4: ओ प्रावा हैप्पी बडियाल ते सुखा टीसी कोल जा ते ट्रक दी एक नंबर रिपेयर करा
3: सच्ची
4: ओ मुच्ची
3: फेर प्राइस ट्रक रिपेयर सेंटर दे हैप्पी बडियाल ते सुखा टीसी जो के इंजन रीबिल्ड ट्रांसमिशन रीबिल्ड रिपेयर डीपीएफ क्लीनिंग एंड रिपेयर इलेक्ट्रिकल रिपेयर सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस ए टू जेड सर्विस करके देंगे
4: इना कोला सालां दा तजुर्बा
3: हुन एड्रेस भी लिखा
4: ले लिख ला 1 गुड मार्क प्लेस इटोबिकोक यूनिट 5
3: कॉल 6479257 6477069257
5: की थोड़े बैंक ने मोर्गेज नु इनकार कर देता है की थोड़ी क्लोजिंग लागे आ रही है या तानु पैसे दी पै गई है लोड ते इको एक नाम याद रखो मोर्गेज अलायंस नाल काम कर दे विक सैदोव फर्स्ट मोर्गेज सेकंड मोर्गेज ए लेंडर बी लेंडर प्राइवेट फंड्स चाहते हो घर दी रीफाइनेंसिंग करवाना चाहते हो या तुसी 24 घंटे दे विच विच फंड्स चाहते हो ते इको एक नाम विक सैदोव 30 टॉप फ्लाइट ड्राइव यूनिट नंबर 1 in Mississauga. Vadhere jankarali call 647-968-8272. 647-968-8272. License number 10530.
6: Shahar di awaz, dilan di pukar. Your city, your voice, your radio star. Aagya fer to ek var. Tuhada apna CJMR 1320.

0: समोसा एंड स्वीट फैक्टरी जिथे भाजी दिया सारिया आइटमा $4.75 पर पाउंड तो शुरू ने। बेसन, पिस्ता, रसगुल्ले और जस्ट $5 पर पाउंड। तुहाडे इन्ने सालां दे भरोसे अते विश्वास कारण असी लेके आए हैं कस्टमर्स एप्रिसिएशन सेल 2026। 100% कैनेडियन मेड टॉप क्वालिटी स्वीट्स हुन 3 लोकेशंस तो सर्व कर देने। 2 इन ब्रैम्पटन, 1850 एल्बन रोड, इटोबीको। वधेरे जानकारी ले कॉल करो 416-213-1150 416-213-1165।
1: ताजिया सब्जियां, फ्रेश फल फ्रूट, वधिया ग्रोसरी ते इंडिया तो आया तो हड़ा मन पसंद समान मिलेगा हुन वधिया रेट्स ते, क्योंकि तो हड़े अपने शहर विच आ गया अनाज मार। रोज दी ग्रोसरी होवे, चावल, दाला, आटा, देसी घ्यो, मसाले, टी, स्नैक्स या फिर इंडियन किचन दा कोई भी जरूरी समान, सब कुछ मिलेगा अंडर वन रूफ। फ्रेशनेस, वैरायटी, क्वालिटी ते वधिया प्राइसेस ले अज ही विजिट करो अनाज मार, एयरपोर्ट रोड एंड मेफील्ड रोड दे कॉर्नर ते, एट 6141 मेफील्ड रोड, यूनिट 42A, ब्रैम्पटन। कॉल 9059288 5557 Anaj Mart।

0: नवंबर 5 से 8 तक मनाओ दिवाली ब्रार्स के साथ। हैप्पी दिवाली।
1: HK Movers, home, offices, apartments and delivery, big or small, we move it all.
2: HK Movers,
1: local and long distance, we also ship cars, Kailor Transport and moving services.
2: For service with a smile, give us a call.
1: Call Mr. Harminder 416-524-6704.
2: 416-524-6704.
1: Visit 140 Advance Boulevard, Unit Number 10, Brampton.
3: Long distance moving specialist,
1: HK Movers. HK Movers.
4: शहर दी आवाज, दिला दी पुकार, योर सिटी योर वॉइस योर रेडियो स्टार आ गया फेर तो एक बार तुहाडा अपना CJMR 1320

शहर दी आवाज दिला दी पुकार योर सिटी योर वॉइस योर रेडियो स्टार आ गया फिर तो एक बार तुहाडा अपना CJMR 1320 CJMR 1320